0: सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक मुनि सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76 888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: अध्यात्म ज्योति शांति वे
1: प्रस्तुत इसमें निर्मित चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागी प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमांडू।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।
2: व्यावसायिक सन्देश पश्चात पुनः एकपटक यहाँलाई स्वागत छ। आधुनिक श्रोता अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम वन्दना र आज गंगा दशहराको पावन अवसरमा अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ केही गंगा सम्बन्धी भजनहरू।
3: भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस खोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर अवतरण। घोर तपस्वी राजा भगीरथ

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत गोमुख से गंगा सागर तक युगों युगों से श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाता रहा है।

0: Hyle, यहां सुंदर यूनुंचा FM और चैट मॉम जोटी जोटी
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: आज 10 वर्ष बितेको थाहै भएन, यति लामो विदेश बसाई पछिको।

आश्रम पहुंचकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। गंगा मैया की महिमा कितनी निराली है भक्तों, ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती है। इसके जल से कितने रोग नष्ट हो जाते हैं।

सुख हम सभी भोग रहे हैं, उस पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय सूर्यवंशियों को जाता है। सतयुग में महाराजा सगर हुए, उन्हीं के कुल की पांचवी पीढ़ी में महाराज भगीरथ हुए, उन्हीं के तपोबल से गंगा देवलोक से मृत्युलोक में आई।

नाम था अश्मंजस और रानी सुमति के द्वारा महाराज सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पिता बनते ही महाराजा सगर की खुशियों का ठिकाना न रहा। सभी नगरवासियों ने

सभी यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। ये यज्ञ पूरा ना हो पाए इसकी एक योजना देवराज इंद्र ने बना डाली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को पकड़कर चोरी से कपिल मुनि के आश्रम में उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। महाराज सगर को जब ये सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को

उन्होंने ये मान लिया कि हो ना हो इस मुनि ने ही इस घोड़े को चुराया है। क्रोध में आकर न जाने कैसे कैसे अपशब्द उस मुनि को कह डाले और कपिल मुनि का ध्यान भंग कर दिया। कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो उठे। जैसे ही मुनि ने क्रोध भरी दृष्टि से सगर के 60,000 पुत्रों को देखा तो सभी वहीं जलकर भस्म हो गए। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए हैं, ये सुनकर महाराज सगर व सभी नगरवासी शोक में डूब गए। सगर पुत्र अश्मंजस पहले से ही वन में तप करने के लिए जा चुके थे। अश्मंजस का पुत्र अंशुमान जो राजा सगर को बहुत प्रिय था उसे इस घटना का पता लगाने के लिए भेजा।

भक्तों, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु जंगल में जाकर हजारों वर्ष तक तप किया, किंतु वो गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर की

इस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। मैं अपने चाचाओं को मोक्ष दिलाऊंगा, लेकिन अंशुमान भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके।

शाप से भस्म हुए 60,000 पुत्रों की राख ज्यों की त्यों पड़ी रही। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने सोचा कि हमारी इतनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, परंतु गंगा धरती पर क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण हो सकता है। भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। महाराज भगीरथ को ये आभास हो गया कि गंगा जी भगवान विष्णु की कृपा के बिना देवलोक से नहीं आ सकती। भगीरथ ने मन में सोचा और श्री विष्णु की तपस्या करने निकल पड़े।

प्रिय भक्तों, संकल्प अगर दृढ़ है तो आत्मबल भी प्रबल होगा, आत्मबल प्रबल होगा तो तप में भी बल होगा। साधक, साधना और साध्य जब तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भगीरथ घोर तपस्वी थे, उनके तप बल और हट ने एक दिन देवलोक हिला दिया। उनकी नाक से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली जो देवलोक पहुंची। ज्वाला की आंच से सारा देवलोक झुलसने लगा, देवताओं में हड़कंप मच गया। ज्वाला जहां से निकल रही थी सारे देवता उस ओर देखने लगे।

सोचा यदि इसे रोका ना गया तो प्रलय हो सकती है। ऐसा विचार करके सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात को सुना और उन्हें धीरज बंधाया। प्रभु स्वयं तपस्वी पर प्रसन्न होकर एक प्रकाशमय तेज पुंज के साथ भगीरथ के सामने प्रकट हुए। भक्तों,

करते समाप्त हो गई। मेरे 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि की शाप ज्वाला ने जलाकर भस्म कर दिया है। उनकी राख का ढेर आज भी वहीं पर पड़ा है। जब तक माँ गंगा का पावन जल उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, वो ऋषि के शाप से मुक्त नहीं होंगे। प्रभु मुझ दीन दुखी पर दया कीजिए। देवलोक से पावन गंगा को धरती पर उतारिए। इसमें मेरा ही नहीं सारे संसार का भला होगा। भगवान विष्णु ने कहा, एवमस्तु तपस्वी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।

प्रसन्न करना होगा, क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने की शक्ति केवल महादेव जी में ही है। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की। ब्रह्मा जी भगीरथ की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोले,

ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अति प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: man or a baby can hide.
1: You can't kill me with this.
2: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है।
3: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: One oh four eight.

तो फोहर तो शहर दही तो ही भीड़ भाड़ थोतरा धात्री मोटर कार काठमांडू बसने रहर कस्तो फोहर तो शहर दही तो ही भीड़ भाड़ थोतरा धात्री मोटर कार।

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर यूं हुआ।

दिल और धड़कन दूर हो गए, मजबूर हो गए कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए।

हंस के रुलाती है। लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले, मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। अरे रे रे रे, इस धूम धड़ाकेदार जमाने में इधर उधर भाग दौड़ करने वालों, जरा रुक जाइए। हाँ अम्मा, 1972 के लाजवाब संगीत का दूसरा भाग शुरू हो रहा है आज गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 35 में। इसीलिए तो जरा थम जाइए, जरा ठहर जाइए। देखिए मीना कुमारी की पाकीज़ा यादें भी आपसे

0: कमाल अमरोही की अमर फिल्म पाकीजा के इस छांव में छुपे हुए गीत को तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मगर खुद मीना कुमारी ने, जो कमाल अमरोही साहब की हीरोइन ही नहीं बल्कि बीवी भी थी, उन्होंने मुझे बताया था, जी हाँ, कि गीत से पहले जो चार मिसरों का कता था ना, उसे मजरूह साहब ने नहीं बल्कि खुद कमाल अमरोही साहब ने लिखा था।
1: जी हाँ, इसका वो कता कमाल साहब का ही लिखा हुआ है।
0: दोस्तों, ये कता तो आपने ठाड़े रहियो से पहले कई बार सुना होगा, पर आज जिंदगी में पहली बार इसे सुनिए एक नए रूप में, मीना कुमारी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी।
1: चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है,
2: ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है।
1: आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद,
2: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है,
1: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
0: और इसी तरह जब बरसों बनते बनते रहने के बाद फिल्म पाकीजा मुकम्मल बन गई और उसकी रिलीज की रात आई, तो पाकीजा तो हिट हो गई साहब, मगर 31 मार्च 1972 ही की रात मीना जी ही दुनिया छोड़ गई। खैर बहनों और भाइयों, उसको तो जमाना हो गया, अब चलिए मेरे साथ 1972 की सालाना संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से में। उस साल के पायदान नंबर 37 से 23 तक के गीत तो आपने पिछले वॉल्यूम नंबर 34 में सुने, और ये आई झलक गीत नंबर 22 की।
3: एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार,
4: पहले चीज का नाम बताओ,
3: देखो हम पर शक ना।

0: मिलते हैं।
1: ये फिल्म थी बाबुल की गलियां और उस साल के गीत नंबर 21 ने तो भाई धूम मचा दी थी साहब। उसमें एक नई गायिका आई और सारे संगीत प्रेमी जो थे वो बोल उठे, वाह क्या आवाज है, क्या तैयारी है।

0: फिल्म गुड्डी के इस शास्त्रीय संगीत में डूबे हुए गीत को बताइए किसने गाया था? जी हाँ, नए गायिका वाणी जयराम ने। और किसके लिए गाया था? यस, उन दिनों की नई सुपर अदाकारा जया भादुरी के लिए। और गुड्डी ही थी जया की सबसे पहले शुरू होने वाली फिल्म। खैर, गुड्डी के साथ साथ और उसके बाद में भी जया जी की तो कई फिल्में आईं और हिट होती ही रहीं। फिर वो जया बच्चन बन गई और आज तक हिंदी फिल्मी दुनिया में छाई हुई हैं। मगर गुड्डी जया का गीत बोले रे पपीहरा गाने वाली वाणी जयराम तो कुछ ही अरसे के बाद मुंबई के बॉलीवुड को छोड़कर मद्रास की फिल्मों में पहुंच गईं और वहां की अयो सुपर सिंगिंग स्टार बन गईं। अच्छा, वैसे गुड्डी के संगीतकार वो थे बहनों भाइयों जिनकी शोहरत कुछ कुछ ढलने लगी थी तब तक, यानी गजब के सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई। उस साल एक और बड़े ही गुणी सुरों के जन्मदाता जयदेव की एक फिल्म आई पर ज्यादा नहीं चल पाई। मगर उस फिल्म मान जाइए कि एक और बहुत ही बढ़िया गीत के बिना तो हमारी गीतमाला की छांव अधूरी रह जाएगी। कौन सा गीत?
1: ये

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। और साहब, अब मैं छाव से चुना हुआ एक ऐसा गीत पेश करता हूँ जो 1972 में तो ज्यादा नहीं चला, मगर उसके करीब 15 साल बाद से आज तक जब भी वो किसी रेडियो या टीवी स्टेशन पर बजता है ना, तो नौजवान लड़के लड़कियां खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। आप भी करेंगे जरूर। गीतमाला की छाव में के इस पैक के कवर पर इसके जन्मदाताओं के नाम जरूर देखिएगा, मगर पहले गीत सुनिए जरा।

अरे अरे, बंगले के पीछे हो रही आपकी हरकतों को देखिए देखिए, कोई देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो चलेगा। खैर साहब।

अरे अरे, बंगले के पीछे हो रही आपकी हरकतों को देखिए देखिए, कोई देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो चलेगा। खैर साहब, ये

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: कारवां चलेगा बहनों भाइयों, वो उस साल की संगीत सीढ़ी के हिट गीतों की झलकों का कारवां है, जिसमें कुछ सितारे भी साथ साथ चलेंगे। तो देखिए, पायदान नंबर 20 पर थी गुलाबी जवानियां फिल्म जीत की।

0: और साहब अब जरा मुस्कुरा कर हो जाइए तैयार, क्योंकि गीत नंबर 19 से पहले आने वाली हैं दो गजब की यादें। पहली याद है कॉमेडी के शहजादे महमूद की, उनके बचपन के बारे में।
1: बचपन में हम बहुत मस्ती वाला चोकरा था, बहुत मस्ती करता था। मेरा वजह से बहुत चोकरा लोग को तकलीफ हुआ, नुकसान हुआ।
2: अच्छा,
1: मेरा माँ उसके वास्ते बोले को बहुत मारता था, हम मस्ती वैसा करता था।
2: ओहो,
1: मेरा आँख के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और लौंग का मसाला लगा के फिर बेत से मेरे को मारता था।
2: अरे वाह वाह वाह,
1: आप वाह वाह करता, जो दूसरे को सुनाता वो लोग तो रोता है कि अरे अरे बेचारा कितना मार खाता।
0: महमूद ने बचपन ही नहीं जवानी में भी बहुत सारी शरारतें की, मगर जब वो एक्टर से प्रोड्यूसर बने ना, तो उन्होंने कई और एक्टरों को स्टार बनने में पहला जबरदस्त सहारा भी दिया था, जैसे अमिताभ बच्चन को। जी हाँ, अमिताभ का मिलन महमूद से हुआ महमूद के छोटे भाई अनवर अली के जरिए, जिन्होंने अमित के साथ काम किया था ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में। अनवर को अमिताभ का काम काफी अच्छा लगा था, तो उसने सोचा क्यों न सात हिंदुस्तानी का ट्रायल महमूद भाईजान को दिखाया जाए, अगर उन्हें अमिताभ का काम पसंद आया तो शायद वो किसी बड़ी फिल्म में नौजवान अमिताभ को बड़ा रोल दे दें। तो साहब महमूद बुलाए गए, सात हिंदुस्तानी का ट्रायल शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ ये आप अमिताभ बच्चन ही से सुन लीजिए ना।
3: खैर साहब, भाईजान के लिए फिल्म सात हिंदुस्तानी का ट्रायल रखवाया गया।
2: तो ट्रायल देखकर आपका काम उन्हें कैसा लगा?
3: यही सवाल मैंने डरते डरते उनसे पूछा, तो वो उछल कर कहने लगे, अरे मेरा घोड़ा जीत गया, मेरा घोड़ा जीत गया।
2: अच्छा,
3: मैं थोड़ा निराश हो गया कि मेरे काम के बारे में तो महमूद भाई कुछ कह नहीं रहे, बस अपने घोड़ी की ही फिक्र है उनको। लेकिन बाद में अन्नू ने मुझे बताया कि महमूद भाई आजकल दुनिया की हर चीज को घोड़े के रूप में देखते हैं, और जीवन का हर मोड़ उनके लिए रेस के समान है।
2: अच्छा अच्छा,
3: और वो मेरा घोड़ा जीत गया इसलिए बोल उठे थे क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आया था और वे मुझे हीरो का काम भी देने वाले थे।
0: और भाई सचमुच बॉम्बे टू गोवा में महमूद भाई का वो घोड़ा बड़ी उछल कूद के साथ जीता, और उनका एक उछलता हुआ गीत उस साल गीतमाला में नंबर 19 तक पहुंच गया।

दोस्तों अमिताभ की वो पहली धमाचौकड़ी आपने देखी थी ना, तो अब चलिए उस साल की पायदान नंबर 18 पर और सुनिए और खुद भी गाइए फिल्म लाल पत्ते।

अच्छा, उन दिनों एक मशहूर फिल्म के गीत 1972 और 73 यानी दो सालों के बीच बट गए थे, इसलिए दोनों ही बरसों में वो जरा नीचे नीचे ही रहे।

0: वैसे उस साल रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थीं, जैसे जीत, जवानी दीवानी और कल आज और कल, जिसके वो डायरेक्टर भी थे। लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में रेखा के ऑपोजिट काम करना है, तो आप जानते हैं रणधीर किस तरह अपने पेट नेम की तरह डब्बू बन गए थे। लीजिए उन्हीं से सुनिए।
1: जब मैं रेखा को पहली बार मिला, मैं बहुत नर्वस था।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि सब लोगों ने मुझे कह रखा था कि वो बहुत खतरनाक है और मुझ जैसे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाती है और
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तुमने कैसा पाया उन्हें?
1: धीरे धीरे काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैंने जाना और उसे पहचाना कि वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की है।
2: अच्छा
1: जी हाँ, रेखा बहुत अच्छी कलाकार है, फिल्मी दुनिया में भी और अपनी असली जिंदगी में भी।
0: और साहब, रणधीर कपूर की यादों से टकराने के बाद अब चलिए नेपाल, जहां वहीं की एक लोक धुन पर गाया जा रहा था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत पायदान नंबर 14 पर।

0: के।
1: बहन और भाइयों, जीवन कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना सुखी होता है जब तक आशिक और माशूक शादी के बाद पति पत्नी बनकर एक दूजे के पूरक बनकर खुशी खुशी साथ साथ जीवन बिताते हैं। और अगर उस जोड़े में से एक चल बसता है ना, तो कितनी उदासी छा जाती है बाकी रह जाने वाले पर। इसका एहसास मुझे फिर एक बार हुआ जब इस वॉल्यूम नंबर 35 की रिकॉर्डिंग के दौरान फरवरी 2012 में मुझे मेरे एक दोस्त ने बेंगलोर से फोन करके बताया कि आपको बताया है अमीन भाई, महीने भर पहले यहां बेंगलोर में महान गायक मन्ना डे की जीवन संगनी यानी हमारी सुलोचना भाभी का देहांत हो गया। मुझे धक्का सा लगा, मैंने फौरन बेंगलोर फोन किया उनके दुख में शिरकत करने। बड़े उदास थे मन्ना दा अपना 57 बरस का रिश्ता टूट जाने पर। और बहनों भाइयों, फिर मुझे याद आया 1972 ही की छांव का वो गीत जो लगता है जैसे शायद मन्ना डे ने अपनी इसी जुदाई, इसी सूनेपन का इजहार करते हुए आज दोबारा

0: बहनों और भाइयों, अब आगे बढ़िए मगर संगी छेड़ी पर न जाइए, छांव ही में रहिए। यहाँ कुछ मूड बदलने की जरूरत है, इसलिए
1: मन का दर्पण तुम बिन जीवन।
0: बहनों और भाइयों, अब आगे बढ़िए मगर संगी छेड़ी पर न जाइए, छांव ही में रहिए। यहाँ कुछ मूड बदलने की जरूरत है, इसलिए आइए झूम के सुने प्यार के सपनों का उसी साल का एक गीत, जिसकी धुन बनाई थी हिट संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश ने, जो खुद भी बड़े गुणी थे पर कुछ कम चले।

दोस्तों, लाजवाब, मजेदार, सुमधुर, दिल को छू लेने वाले गीतों की कोई कमी नहीं थी उस साल भी। उनमें बहुत सारे तो गीतमाला में हिट हो गए और कुछ हमारी गीतमाला की छाओ के लिए बचे रहे। लीजिए एक बड़ा नाजुक सा गीत सुनिए, जिसकी फिल्म लाल पत्थर का एक और गीत आपने अभी कुछ देर पहले संगीत सीढ़ी की झलकों में भी सुना था।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से हो जाएं 1972 की संगीत सीढ़ी की तीन झलकें। पायदान नंबर 13 पर था गीत फिल्म धड़कन का, जिसे दो हो जिया एक नहीं बल्कि दो मशहूर लोगों ने मिलकर लिखा था, एक तो प्रेम धवन और दूसरे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर

0: रास्ता।
1: नंबर 12 पर था फिल्म अपराध का एक ताने मारता हुआ गीत,
0: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।

कुछ बरसों के बाद हो गई शादी। इस फिल्म के हीरो गोरे चिट्टे गोल्डन बॉय राकेश रोशन की इसी फिल्म के मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की खूबसूरत और बेहद सुलझी हुई बेटी पिंकी से। और उसके बाद खैर बनो रहियो, आप सभी जानते ही हैं कि बाद में क्या क्या हुआ, बल्कि क्या क्या शानदार फिल्मी घटनाएं घटी राकेश रोशन के जीवन में। अभी तो 1972 ही में रहकर फिर चलिए उस साल की छाव में, जिसमें अब मैं ऐसा काम करूंगा जो गीतमाला की छाव में नॉर्मली नहीं करता, और वो ये कि एक ऐसा गीत पेश करूंगा जो उसके अगले साल यानी 1973 में गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर था जरूर, मगर बहुत ही नीचे था, यानी पायदान नंबर 35 पर। लेकिन गीत आया था 1972 में और इतना खूबसूरत गीत था वो, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और पूरा पूरा बजने के काबिल है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ब्रिजभूषण, जहां ब्रिजभूषण याद है ना आपको नाम, जिन्होंने संगीत निर्देशन कम फिल्मों में किया मगर उनमें कई बेहद सुरीले नगीने पेश किए साहब। मगर वो फिल्में जरा छोटी यानी कम बजट वाली थीं और इसलिए ज्यादा नहीं वो चल पाई, और उनके लाजवाब गीत भी आए गए से हो गए। वैसे रेडियो टीवी और कमर्शियल फिल्मों में बोलने वालों में आज भी ब्रिजभूषण सुपरस्टार हैं, और ये और इनकी बीवी जाहिदा उर्फ मधुर भूषण यानी मधुबाला की छोटी बहन, ये दोनों मेरे रेडियो यूनिट के राजा रानी समान हैं। तो भाई सुनिए ब्रिजभूषण की धुन में ढला हुआ वो गीत और याद कीजिए फिल्म का नाम।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।